जानी दुश्मन इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वी बैन ने। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल ने। ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालों उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर, सत्यम सिंह, अंशराज एवं उनका समस्त परिवार। संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी, इशिका, फागुराम यादव ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू दासू, अर्णव आनंद, सत्यम ने इस गीत की फरमाइश

मन्नाडे की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी फिरासत हुसैन मुनव्वर लल्ला पप्पू बिजली वाले शेख शमा परवीन अलकमर बेगम अफसाना बेगम महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े वनीता छोटू पूजा रोशनी अजय और वामिका ने। ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे वंदना भूपेंद्र झवर तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी स्नेह हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे विजया और मिलन ने इसी गीत की फरमाइश

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओजा, प्रतीक ने इसी गीत की, और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र, और शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े।

इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जस

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और

0: मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
0: नहीं नहीं, और न तोड़ो।
1: क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं?
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासुदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे, कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
2: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
0: हाँ हाँ, वही तो है चेटी। अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
2: आओ यही करें राजकुमारी।
3: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
4: कैसे जाना वसंतक?
3: अरे इस शेफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
4: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
3: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
4: अच्छा आओ चलो।
2: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र का मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसे ही करो।
3: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
4: अरे अरे अरे, मधुकरों को भया तो न करो वसंतक। हमारे पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
3: जी
2: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
0: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्यपुत्र बैठे हैं।
1: आर्यपुत्र स्वस्थ है, प्रसन्न है, भाग्य की कृपा।
2: अरे आर्य, अवंतिका के आंखों में ये आंसू कैसे?
1: नहीं नहीं, कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।
5: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूँ।
4: पूछो बसंतक।
5: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
4: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
5: मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
4: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो, तुम्हें कौन प्रिय है?
5: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी, दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ, उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक कहाँ हैं।
4: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
5: अब देवी वासवदत्ता कहाँ हैं, वे तो कभी की परलोक सिधारी।
4: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते, वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता, उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
5: अरे अरे, आपका मुख आंसुओं से भीग गया, चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
0: अवंती के, आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो, यही समय है, हम यहाँ से निकल चलें।
1: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं, आप यहीं ठहरें, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ।
2: हाँ, यही उचित है। देवी पद्मावती, हम आर्य के पास चले।
0: सचमुच जाऊं?
1: हाँ जाओ पद्मावती, जाओ, वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
6: आर्य की जय हो।
4: पद्मावती बैठो, जल ले आए वसंतक।
5: जी हाँ,
4: काशरज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
6: अथवा किसी दुख से?
4: नहीं पद्मावती, नहीं।
5: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
4: ठीक कहा वसंतक, आओ।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र ग्रह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र ग्रह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहाँ शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहाँ आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहाँ नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहाँ कोई शोभा रची गई।
1: तो देव, उनके यहाँ आने की प्रतीक्षा करें।
2: हाँ यही ठीक है। मित्र वसंतक।
1: जी।
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाएं और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है, है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासु दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता, वासव दत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
2: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: कि कितना निठुर है ये पद्मावती, जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती, अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता,
3: ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
0: प्रिये,
3: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंधरायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
0: अवंती। थी राजपुत्री।
3: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
0: आशीष,
3: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
0: क्या तुम कुपित हो?
3: नहीं, दुखी हूँ।
0: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
3: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
0: वासुदत्ता, प्रिय, प्रिय।
3: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहाँ देर से बैठी हूँ। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
0: प्रिय,
3: चलो, चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
0: ठहरो, ठहरो, ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
1: राजन, जाग गए आप?
2: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
1: क्या?
2: वासुदत्ता जीवित है।
1: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गई।
2: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
1: समझा, समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासुदत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
2: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता। यदि ये भ्रम है तो वो सदा बना रहे।
1: समझा राजन, समझा। इस राजगृह नगरी में अवंति सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
2: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा। मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो। स्वप्न में ही वासुदत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
1: राजन, व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
4: चलिए राजन, चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणि पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणि को तैरते गजाश्वों और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था।

0: घोषवती का स्वर? यह तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ पाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: विजया जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ्य गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
4: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
3: कंचुकी और धाय द्वार पर खड़े हैं महाराज,
4: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
7: आर्य पुत्र की जय हो।
4: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
8: सकुशल हैं और आप सबके कुशलार्थी हैं।
4: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
8: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
4: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ, बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
9: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
4: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है।
9: राजन संताप न करे।
8: स्वामी धैर्य धरे, महासेन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
4: वासव दत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
9: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है, वासव दत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं, पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासु दत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासु दत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासु दत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया, उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हो।
4: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही, उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
5: आर्य पुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
7: ये देखिए पद्मावती जी।
5: अरे
4: देवी, क्या बात है?
5: आर्य पुत्र, आश्चर्य, देवी वासव दत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
4: यहाँ?
5: हाँ आर्य पुत्र।
4: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
5: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
4: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप साम्य मिल ही जाता है।
3: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
4: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
5: संभव है वही हो।
4: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
3: जो आज्ञा प्रभु।
4: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
5: जी।
6: जय हो, आपकी जय हो।
4: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी

0: इनको देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
1: हाँ राजन।
0: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
2: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
0: धरोहर लौटा दो पद्मावती। वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
2: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
0: मेरे प्रिया वासुदत्ता, सच? अगर यही है तो देवी पद्मावती आप वासुदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
1: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
0: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
1: स्वामी की जय।
0: महामात्य।
2: आर्य पुत्र की जय।
0: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य योगेंद्रायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
1: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
0: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है। आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
3: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
0: मित्र योगेंद्रायण, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
1: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
0: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
1: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
0: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
1: हाँ राजन, सभी जानते थे। महाराज उदयन, रैभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
0: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे, और हमारे साथ वासुदत्ता भी होंगी।
1: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा स्वप्न।

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।